सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा।

माधोजी। सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुई निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होगा, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, यह मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगती, जांदियां भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने धन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है। इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पे। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे है की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए, एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसका नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ए पलिया, तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होई, बहुता कुछ उत्थे बनाई दा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार, रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भी किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ।

फिर पथ कह रहे ने तेना दुख न भुख तिनर निधन नु कही। उस इंसान नु उस नर नु कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदी, वो निर्धन नहीं रह सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसदे। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, वो किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समपै, वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक विच उनू वेखूगा। सहज समपै तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, उसका स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जाऊगा, गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, उहदे विच इन्नी शक्ति आ जाऊगी वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, वो खुड़िया होया नू बसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ये सारे सुख उन्हू मिलन। अप है पट रिप मध ते सक्यथ तिनर जालप बने, किनू ये सुख मिलनगे किनू ये वड्याईयां मिलनगियां। गुरु अमरदास सुख प्रसन्न गे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जिदे ते प्रसन्न हो जाणगे, ये सारे सुख ये सारिया

गुरमुख जापे। जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापे। आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभु आपे। आपे जालो हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे।

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहू महादान होय के मांगो धन देत हो, कहू महा

कहूँ देव बानी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मेड़ानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण शाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

महत्व की बात के कहे कि निर्माण निर्माण निदान निदान संकट की संस्था की पूरी देखकर बड़ी अकीत जनाब में बैठी दूर का समझियो आप भी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी दे इतने अहम करे मसलियां के बीचों आपकी इस्तीफा कटिया जो आपकी ने सोच लिया कर आप उत्तर बाद जाना है एक गल नारी आज हो गई सब कुछ दूर पैदा आगे हो गई थी सब जी ने आप बड़े सुंदर अंदाज राज उस संगीत गलत गलत कीते हम सच समझियो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी दशिया साहब जी कांत जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच समझी जो संगीत है गाँव का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्नड़ गल पैगे नहीं तदेंगे इन्हें राजी हो गए ऐने राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजमून न बढ़ गल है आत्म गल है मेहनत जिन की सुपार का जिला मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजमून नहीं जिन्हें करना है उन साधन की वोटिंग मिल पहली गल साढ़े तेरे अक्षर लग गया है ये तो आड़ है सचिंदी पैसा जी कहा तो हारी बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी ये सब कर्तन की गल तो ठीक है मैं दो गल कह के सात संगी दुनिया के दो फांड आठ हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाँव के पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आदि स्वरूप है ना परमेश्वर ये अलग बात है ये तो जरूर सब समझ आए कि कीर्तन की है तो फिर सत्संग की आवाज की लोड़ नहीं झगड़े की लोड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे लास्ट 25 मिनट टाइम है लास्ट तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे शब्द की चीज है आपे खुद चेला है आपे आपे हर सब चोट बनाई हालात तकलीफ है यत्न करेंगे क्या भी नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफ है आओ आपकी मदद एक बात मैं पूछ सकते हैं कब लोग नतीजे वाहे

समुद्र के किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे की संदूकड़ी पई है। ठंडी ठंडी हवा

दो प्रेमी आए। इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकया। सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई। थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने। थोड़ी देर बाद दो चार होर प्रेमी आए ने। उन्हां भी संदूखड़ी विच पैसे पाए, मथा टेकिया, वो भी बैठ गए ने। ज्यों ज्यों पौ फुटाला हुंदा गया, तीन चार सौ दे करीब लोकां दी भीड़ इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन। कदों ए जोगी राज अखां खोले, सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नू इना बैठिया लोकां नू इंज लगया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जी फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने, जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। वो तुरदे तुरदे इन्हां सारिआं लोकां दे सामने आ के बैठ गए। दोनां मुसाफरां ने उस जोगी राज वल देखिआ। एक मुसाफिर मालक जापदा है, एक नौकर। नौकर कहन लगा, ए जोगी राज किवें मन टिका

उस मालिक दा नौकर मुस्कुरा पिया। मुस्कुरा की के अपने नौकर नूं हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा लोहे दी संदूखड़ी

लगे असी जान नहीं सके, इसे वास्ते ता पूछिए। ते जोगी राज कहन लगा, ए बालके मैं इन लोगों को तीनों लोकों की बातें बता रहा हूं। तीनों लोकों में क्या हो रहा है मुझे तीनों लोकों की सोझी है कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। तो गुरु साहब जी कहन लगे, अच्छा चंगा फिर जोगीराज जरा ए दसो, तिना लोकां दा ज्ञान तां तुहानू है, तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगीराज ने सामने देखिया ती संदूकड़ी कोई नहीं, जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे, भाई तेरी संदूकड़ी किथे? ते जोगी राज कहंदा है, गुरु साहिबां नूं बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है। ते गुरु साहिब जी हस पए।

ते गुरु साहबानी उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है कल मैं राम नाम सार ऐ भाई पखंड छड दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जदके तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नु की

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी।

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन। उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नु कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान दा एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा।

इस सेठ नूं गल्ली बाती जंगल विच लै गए ने। उथे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओ खो लिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उथों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

जिन्हां ने गज साढ़े तै तै धोतियां साढ़े तीन तीन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनिया ने तेहरे पाए ने तग ते तेरे तेरे जनेऊ गल च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिटे चमकदे हुए लोटे फड़े हुए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

वसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

ए अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया,

अपना वड्डा पण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे। उन्हां लोकां नूं कहण लगा, नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हे माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलो माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुटन लग

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने चलो भैणा बड़े बड़े संत महा

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपया ओदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो तुसी भी इन्हां पखंडा तो

क्यों चली जी? मां ने आख्या जान न देसा सोडिया। साहब जी जे तुठे हो ना ते रात मेरी झोली विच पा दियो, सेवा सोडी करनगे। गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्हां दे अज आगमन मनाए जा रहे हो, इन्हां दी परदादी मां मां पानी सतसंग जी बड़ी बख्शिश होई है मां ते। एक ते गुरु पुत्री है, दूजा गुरु दे घरों है, तीजे गुरु की मां है, चौथे गुरु की दादी है, गुरु अमरदास की सपुत्री है, ते गुरु रामदास दे घरों है, गुरु अर्जन साहब की मां है, सर्वशक्तिमान सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब की दादी है सतसंग। इस खानदान की मालिक है

तब मैं जन्म जगत तारे आयो जिन तिम कई दिने तिम गयो और किसू ते बैर लगयो जो हमको पर

मन क्यों डोलदा? मन दे डोलन दा कारण की है? क्योंकि मन दा कोई आसरा नहीं, मन दा कोई सहारा नहीं। शायद उपदेश देंदे ए गल समझ आ रहे ने, सतगुर संग ना ही मन डोल। जे मन नूं ए यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन नहीं डोल, फिर मन नूं इक दलासा है, मन नूं इक भरोसा है कि गुरु मेरे नाल है। पढ़ते ते आपां जरूर हां, गुरु मेरे संग सदा है नाले, पर यकीन नहीं करदे, विश्वास नहीं करदे, भरोसा नहीं करदे। जे भरोसा हो जाए तो वाकई मन डोलदा नहीं। पर सतगुरु ने ख्याल दिता है कि मन दे डोलन दे कुछ कारण हैं, कि मन क्यों डोल जाता है। चार कारण कुछ सियाणियां ने गिण के दसी। इस मन नूं डर है चार प्रकार का, जिस कारण यह मन डोल जाता है। वो केड़ा है? पहला सरकार दा, ते दूसरा है समाज दा, तीसरा है रोजी दा, चौथा है मौत दा। ये चार प्रकार दा डर मन्निया गया। हुण जे इना तो बढ़ जाए मन नूं ए निश्चय यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन डोलदा नहीं। इना चारियां दी गल सतगुरु ने बाणी विच कही है कि सरकार का डर कैसे

इस मन अंदर कोई डर होवे ते केवल सच्चे वाहिगुरु दा होवे, किसी होर दी लोड़ नहीं। ते वो सच्चे दी सरकार जो जुगो जुगंतर तो चली आ रही इको जी है, उहदे विच कोई डर नहीं। दूसरी गल समाज दी, समाज तो मनुख बड़ा डरता है, समाज की आखेगा, वाणी का फैसला।